0: மீண்டும் மீண்டும் கேட்க தூண்டும் கடலோசை FM 90.4 நமது முன்னேற்றத்திற்கான வானொலி.
1: सभी को शहनाज अख्तरी का नमस्कार. आइए छाया गीत में प्यार से प्यार करें.
2: मुझे इसकी परवाह नहीं.